0: दशमपहा अनुतुनाय दशमहाता लखांडे रेडियो आईटीएन सभे श्रीलंकिया हांडे
1: विलाव पेरवरे कुलहाय
2: विलाव ओपवेत किन आवे
3: लोतराये पेरलिकरण एनएलबी मेगा पावर तेवंत मेगा सुपरिटैग गट अमतरव रुपियाल कोटी एक पावर सुपरिटैग सह ग्रैंड सुपरिटैग गट सुपरी रिमोट रत्या एनएलबी मेगा पावर ओबर अदम मिलदी कन